सारसों का ही पता विभिन्न कृषि कार्य अस्पताल में सारसे बंदरबाजी परिदृश्य पर कभी भारत रचिन द्वारा दुख व्यक्त मोटे को से मारे थे 40 किलोमीटर सड़क तो चिंति ग्रस्त 450 मेगावाट बिजली उत्पादन बंद परिवार का लगी मंत्रालय खुलाई जिम्मेवारी तो कियो जिन्हें अच्छे तरह कुछ तो प्रचार का लगी 600 उत्तर कर्मी परिचालन भारत को बिजली बिहार राज्य में उच्च स्तर का भागने की नया आर्थिक प्रतिबंधाले उन्हें असर न पड़े ग्राम प्रधानी ऑस्ट्रेलिया को जारी टॉप एंड टी 20 सीरीज में नेपाल आज किंगस्टन विल्सन और केन्द्रीय चौनो दक्षिण एशियाली खेलकूद संघ 28 खेल सहभागी हुने ड्राइविंग खेल को विकास का लागि विद्यालय खेलकूद महासंघसँग सम्झौता साझा खबर प्रतिभा कार्टुन कार्टुन हामी आशिष खनालबाट साथै बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ कार्टुन पुरानो हो तर सान्दर्भिकताको आधारमा यसलाई फेरि प्रस्तुत गर्दैछौँ वर्षमा बाढी आयो बाढीपछि विभिन्न विद्यालयहरूबाट

0: तुम्हारा यानी जीवन जीवन खत्म हुई सबसे खाना खाई सब तबाही तुम्हारा काम मजिला को से खड़ा रही राखना दिया तन करी आज भी मेरे काम के जीवन था इशारा रोको से बाजी स्वस्थ जीवन अपनाई
1: रेडियो कुलबाबा एफएम द्वारा सही पहुंचाई संदेश।

0: जता शरीर सम्बन्ध सुरक्षा राख्नु निर्णयका कुरा बुझौ सुनौ अनि खुलेर कुरा गरौ खुलेर सुनौ खुलेर सुनाऊ।
1: BBC Media Action को सहयोग में रेडियो जुन पारा

0: संध्या सवा छ बजे हमारा संदेश में अपना भावक स्वागत बड़ा सक्रिय बिंदु संगम कुमार संदेश प्रसारण संदेश मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक प्रभावित क्षेत्र में पांच कड़ी का नगर वासी का अवस्था पुस्ता नगर पालिका का समन्वय जारी रसे प्रभावित बर्दिया नगर वासी का विवरण संकलन करती बारह बर्दिया नगर पालिका बर्दिया का नागरिक हुकन आर्थिक सहयोग कर जिला प्रशासन का अर्जी शैक्षिक क्षेत्र में पदबंदी ठाकुर बाबा नगर पालिका उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापना का लाभ 15 स्थानीय तह उच्च प्राथमिकता में पूरा समाचार बिंदु से
1: बात करें नगर पालिका रसुआ नुआकोट धादिंग में चितौन लगाये विभिन्न ठावों पर हम दस बजे पहला बजे बड़ा धंधन का क्षेत्र विभाग करना पड़ते गहर दुख व्यक्त करता ये समय में धैर्य पूर्वक सामना करा प्रभावित उद्धार तथा राहत में हाथे मारो कर नगर वासी संबंधित पक्षांकन अर्जी कर रखो बैठक नगर पालिका संबंधित पक्षांकन अर्जी कर रहा बैठक कारण बर्दिया का बास करे कुछ नगर वासी प्रभावित विधक को कुछ संपर्क विहीन रक सूचना प्राप्त विधक नगर पालिका आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करती जाने के बाद आज प्राप्त विवरण अनुसार रोजगारी तथा व्यवसाय को सूचना में रसुआ लगायत को प्रभावित क्षेत्र में बैठे विधक बासकर नगर पालिका बी का बारह जना नगर वासी प्रभावित क्षेत्र में रहना जानकारी प्राप्त विधक विज्ञप्ति में उल्लेख कर महकुम का अवस्था तथा आवश्यक सहयोग का लाभ नगर पालिका संबंधित जिला को जनप्रतिनिधि निरंतर संपर्क और समन्वय जनवाद नगर वासी मध्य एक संपर्क व संबंध तत्काल पास करी नगर पालिका जानकारी कराई अर्जी कई नगर पालिका विपद करी सब समन्वय उत्तर तथा राहत तैयार प्रतिबद्धता समेत जनवाद बागपत नगरपालिका रसुआ नुआकोट ढाटिक मंडल नगरपालिका अवस्था तथा विवरण संकलन का लाभ संपर्क अर्जी करता बैठक का कारण ध्यान नागरिक ज्ञान कवर महत्व सहयोग खेल तथा बागपत नगरपालिका से रोजगारी व्यवसाय तथा अवर प्रयोजन का

0: la nostra temporada, però la batalla que s'acumula per a ells, el pot dir, el seu segon comentari, per tant, som el seu i tot el foro per a l'angol, vull dir, per tant, si tot m'ho ve de fer per a si que no vol que si que vivarem, som com a fer com, m'han presentat per com a rol, ni rols, no sé que a ell, ni rols, que a ell m'ho ha de portar allò com es parlaré, i que ha de tancar-hi, la batalla que no ho podem de cada dia, per dir que hi va, els nens que som a dit, i està a l'itar, dirà, per la Santa Eglés, la Txani Pèrta, o la Sant Carme Orgànica, i potser està molt bé que hi va, jo per tant, la Pèrta, el costa de la Subveia, que no hi ha un cop i va, o hi ha un cop de la Carme, o s'ha de per encara, la veritat que cal dir, no cal pàricar, el dir que no cal. Veiem el poc que hi ha que ve l'extracur, no ha dit pot dir, pare, perquè ara cal pàricar, ara que es fa tant de dir, ara s'ha acceptat de pàricar del món, s'ha de dir, no ha dit que cal dir, s'ha de cal dir, no cal dir, no cal dir, no cal dir, no cal dir, no cal dir, no cal dir, no cal dir, no cal dir, no cal dir, no cal dir, i per tant, que cal dir, que cal dir, per tant, que cal dir, per tant, que cal dir, per tant, el tànec de 2.5, sortís a 3.5, per fer el secret i fer que es veurà, en tant que fa de 61, 61, 20, per fer el que ve aquí, raig com a l'autori, en tant que ja el veia així, pot fer l'exercici de rector, o si és anar per vídeo i fer, ja no podem fer-ho, en tant que ve que si així ho veus, i fer vosaltres, no som per la cara, no va fer-hi que el dic que no va.
1: Vinga, Sotari. Si la feixa s'entane, vol dir la sua clavar i dit que l'atlàtic s'ha de prou per dir que el va. Però d'altres que té la sua agilat o poder cursi la llama, feia la dinàstica i feixama, però sua no ha curtat i la gaire la m'ha cuidat o que el que s'ha de portar si la feixa s'entane, vol dir duc el vector del tipus i el format que l'atlàtic s'ha de prou per dir que la sua agilat o que si la feixa s'entane, vol dir que el tipus s'ha de prou तो विलक्षण सब उनका हार्दिक संतान ने तथा स्वतंत्र तथा परिवार जन्म समेत नवीन तथा लगात संगल कहिया कर पश्चिम स्वास्थ्य लाभ का काम न करके संपत्ति भी नागरिक उपन्यास सकुशल त्याग पाठ कर चाहता अपन तथा परिवार का संपर्क मा वहीं न विश्वास देखते करता नेपाल सरकार प्रभावित क्षेत्र में खोज उतार राहत तथा पुनर्स्थापना का काम बना तत्काल शुरू करेगा तीव्रता देते राजनीतिक प्रशासन और संख्या में प्रभावित नागरिक उन का सुरक्षित ठहरने का व्यवस्थापन कर रहा तत्काल राहत संग तीव्रता पुनर्स्थापना को लागत शुरू को सहयोग आवश्यक रक्षण के बाद विपत्त प्रभावित नगर नागरिक का जीवन रक्षा राहत पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण में सहयोग पूर्ण उद्देश्य से प्रधानमंत्री दैविक प्रकोप उद्धार उस आर्थिक सेवा प्रत्याय सकुतोही व्यवसाय संघ संस्था नागरिक समाज कर्मचारी पेशा कर्मी तथा सकु जिला वासी में जिला प्रशासन कार्य अधिकरण संकट में पड़ नागरिक का पीड़ा में अपना सहायक छोटी सहयोग प्राप्त आशा व भरोसा जगाई सीखने बैठी प्रशासन मानवीय संवेदना व सामाजिक उत्तरदायित्व का संघ सहयोग प्राप्त अधिकरण आजकल बड़ा तलवा में कुनिया तो फुला सुंदरता है रात दूर दूर से तरीत फुलाई था तरीत आकर्षण का फुला के लिए हो स्वास्थ्य उपचार में जड़ी बूटी को मुक्त फुला भूमिका के बाद सुनी रमेश संजय रमेश चौधरी इस रिपोर्ट
2: तब वो पानी जमा था मां पासे ना करके ये फुला सुंदर आकर्षण फुला के लिए हो टीवी एक तो महत्वपूर्ण वनस्पति के और एक और पत्तियां फुला बिया और चार समेत

0: प्रयोग कर रहा था।
1: इसलिए उनका सुंदर
0: बारीवा का तीन जिला का 18 विद्यालय में 36 शिक्षक विद्यार्थी संपर्क विहीन रोजगारी सृजना करने राजनीतिक दल र नेताहरूको भाषण मात्रै उकिन्छ तहसम्मको समन्वय हुँदैछ

0: किसी भी विवरण पर इस समय हो। लागू पदार्थ को एक पदक को परे के पड़ी रद्द मानसिक समस्या र पढ़ाई में असर पुर्न सक्छ।
1: साथी को दबाव में होइन आफ्नो सपना को पक्ष में निर्णय गरौ।
0: तनाव पनि पूरा कुरा गरौ। समाधान लागू पदार्थ होइन।
1: लागू पदार्थ मात्र टाढा बसौ। स्वस्थ र उज्यालो भविष्य रोजौ।
2: रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा जनहितको जारी सन्देश।

0: हजार रुपये में हम सोलह हेक्टर जेसीबी का सागर पास करें। 20-25 दिन पाजे से हमने करीब 20 दिन से 30 दिन के बीच मर्ची के पड़ी होकर बिरुआ करे माटो पानी ज्यादा पानी नहीं हुई था वहाँ मट्टी ज्यादा पानी नहीं हुई था वहाँ चाहे गाड़ी ना से वो वहाँ से मजा बीजी बिरुआ हो गई। एक कथा वो हमन हो गए की हमन के बारी बेची मावे हमन के बारी बेची कौन फसल मावे हमन के बिरुआ पानी मावे की तनिक जुगल मावे की हमन के खल्ला हंस मावे की हमने कैसे धान लगाई वाली मोटा मंची लो हमन के नार लगने वाला खलुआ उछवा बेची नहीं है हम उसके उगरन के ठाम हो बिरुआ उगरन के प्रकृति जैसे के हमने मजा से लाए परिकार हमने ज्यादा पानी नहीं करल गए जब बादल से पानी बची तब उगे हमने नहीं छीना खेतों में ज्यादा पानी उगे नहीं छीना हमने बिहार में करीब अब काम लागत नहीं काम लागत करीब 6 बजे से 8 बजे सब बिहार के समय में संजय घूम कर हम उनके काम डूबी नहीं 4 बजे 5 बजे से 6-7 बजे सब उगे मर के हमने छीटो बड़ा मजा से हम उनकी बारी नारी फंस पाए मौसम के दबाव में काम घर में बैठे हमने तो पढ़ नहीं पाती कहाँ मौसम आज पहले कहाँ पानी आई कहाँ पानी जाए करके ओकर बराबर से हमने जाए नेपाल सरकार के पैसे नहीं गए ना वाले नंबर बावे 11:55 में हम फोन कर दी तो हमने के पास कहने मौसम कैसे बाहर बढ़ गया मौसम कैसे बाहर करके उन्हें से पता नहीं कैसे हमने हमने काम आगे बढ़ाए सिंधी
1: हमें ये नंबर नाइन लगे अब डालने के साथ अभी नंबर में फोन करके तुमसे तब मनोज छीता
0: इससे आगे आपने उसे धाने कैसे कुछ मत चेक करो
1: हमने वैसे लाइन है चुमा सुमा सब चिट्ठे में देना मरे जी चुमा चिट्ठे ची अंदाजे अध्ययन की तटुले की तावरे हाँ तो नाइन भी कहीं थी अब दवाई सब सब उसे आएगी ले मामा तो दवाई चिट्ठे थी दवाई चिट्ठे बा मुद्रा का तुम्हारा बड़ा फिर से मत चिट्ठे थी उसके अंदाजे
0: वे मारे तो आपने हमारे अंदाजी धाने ये मर पाए चल गए तो सब कुछ बिगड़ रहा है हमारे मट्टी की गर्दन के बाल ये बारी नाली के हमारे पाट डाले हैं सुबह पहले हैं सुबह कभी खेतों के विभिन्न किस्म के रोग किरा लागर हमने देखने बाटे नहीं तो वे मारे जो समय में डाल देना जब मन लागर डाल देना घनो एक प्रथम 5 किलो डाल देना वे मारे से समय हेर के हमारे मौसम हेर के वे से हमारे एक प्रथम करीब हमारे बारी नाली ठीक है मजा तो आएगा खेल चार पांच का किलो के हिसाब से मजा आते हेयर के 3 किलो से 5 किलो से मजा आते हुए हमारे अप्लाई कर सकिए उसे हमारे से मन से समय डालना मौसम हेयर के फिर कहना बिहान बिल्कुल फिर करना हुआ मन के माटी का सीजन बिगड़ गई के चेक करेगा बास के अंदर पानी का किसी भी साथ आना के अपन माटी का चेक करा सकती थी ना
1: 20-25 दिन तो डाली बात की हुई कि 20-25 दिन तो अब कहीं डाल सकते हैं
0: बड़ा मजा हुई ले आई थी रहे बात कहीं थी रहे गाँव घर में फिर ऐसी नहीं सोचना सब तो जाना चाहिए होगा

0: যুদ্ধশীল স্থাপত্য ব্যবসায়িক ভূমিকায় অভিনতা ওকে এটি সফল ব্যবস্থা করেছে উত্তর লোকাল উপচার কেন্দ্র জারি করা
1: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपालका साथै वित्तीय कोरोना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदोष अनुसन्धान केन्द्र सम्बन्धको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रका साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
2: केटीलाई
3: समस्या
2: आइरहेछ।